0: कब्र पर।
1: रैप इज एवरीथिंग वी हैव नोन, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। इसे खाला रिवर्नेशन एस्पेक्ट रिकॉर्ड उबैद उस खाला बोस उस खाला गजल फर उस खाला
2: बचपन से नेचर ही अपना था सेफर। जब लेबल यहाँ आई तो लगा वो फेवर, ना साइन था कोई भी मेरे शहर से ना म्यूजिक से बना।